बाज लोग अटकल पच्चू कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ है, उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं, तो तुम उनके मामले में गुफ्तगु न करना मगर सरसरी सी गुफ्तगु, और न उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त ही करना। और किसी काम की निस्बत न कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा,

0: उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हुई और न वो बदला ले सका। यहाँ से साबित हुआ कि हुकूमत सब खुदाए बरहक की है, उसी का सिला बेहतर और उसी का बदला अच्छा है।
1: وَضُرِبْ

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज इतवार है, मुहर्रमुल हराम की 26 और जुलाई की 12 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मशरक़ वुस्ता तनाज़े के तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वह इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें और तनाज़े के पुरम हल के लिए सालिसी की कोशिशों की राह हमवार करें। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि हुकूमत जदीद बुनियादी ढांचे की तरक्की और हुनरमंद अफरादी कुव्वत के शोबे में सरमायाकारी कर रही है। इस्लामी तआवुन तंजीम के तहत ख्वातीन से मुतालिक 2 रोजा नवी वजारती कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में अवाम से कल मनाए जाने वाले यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। रेडियो पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर जनरल और मुमताज ब्रॉडकास्टर जैड बुखारी की 51वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फुटबॉल आलमी कप में रात मियामी में खेले गए तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। खबरें तफसील से। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मशरक़ वुस्ता में जारी तनाज़े के तमाम फरीकों से एक मरतबा फिर अपील की है कि वह इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें और अमन के लिए जारी सालसी की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए मुनासिब वक्त और साजगार माहौल फराहम करें। उन्होंने यह बात सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कही। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और गुज़श्ता माह अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बावजूद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि तनाज़े का दोबारा शिद्दत इख्तियार करना किसी के मफाद में नहीं और यह खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने जारी सिफारती कोशिशों के हवाले से सऊदी अरब का मौकिफ भी बयान किया और कशीदगी में कमी समेत मुज़ाकरात का अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मालदीव की वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर रियोथिशाम आदम से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान देरीना दोस्ती और बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा करते हुए करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। मालदीव की वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़े में सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। मनसूबाबंदी के वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान तेजी से सरमायाकारी जिद्दत और इलाकाई कारोबार के लिए एक पुरकशिश मरकज बन रहा है जिसकी बुनियाद तेजी से तरक्की करती आईटी और डिजिटल मईशत है। उन्होंने ये बात अमरीकी रियासत टेक्सस के शहर डेलस में डेलस रीजनल चैम्बर के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्रेकच्यू से मुलाकात के दौरान कही। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत जदीद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और हुनरमंद अफरादी कुव्वत पर सरमायाकारी कर रही है। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी तालीम और माहौल दोस्त तवानाई के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने पाकिस्तानी जामियात और अमरीका की मुमताज यूनिवर्सिटियों के दरमियान तालीमी और तहकीकी शराकतदारी को फरोग देने पर भी इत्तेफाक किया। तवानाई के वजीर सरदार अवैस अहमद लगारी ने मुल्क की बढ़ती हुई तवानाई जरूरियात पूरी करने के लिए तवानाई का एक मजबूत और मरबूत निज़ाम कायम करने की जरूरत पर जोर दिया है। वो लाहौर में तवानाई के शोबे से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे। वजीर तवानाई ने कहा कि मौशी तरक्की और सनअती फरोग के लिए तवानाई की वाफर और मुसलसल फ्राहमी इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तवानाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए तवील मुद्दत हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जा रहा है। सरदार अवैस अहमद लगारी ने कहा कि हुकूमत तवानाई के शोबे में जिद्दत सरमायाकारी और बाहमी तआवुन को फरोग देने के लिए मौसर पॉलिसी और कवायद जवाबित का निज़ाम वजा करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामी तआवुन तंजीम के तहत ख्वातीन से मुतालिक 2 रोज़ा नवी वजारती कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में मुनाकिद हो रही है। कॉन्फ्रेंस का मौजू है OIC के रुकन मुमालिसी और कवायद जवाबित का निज़ाम वजा करने के लिए पुरअज़्म है।
اسلامی تعاون تنظیم کے تحت خواتین سے متعلق دو روزہ نویں وزارتی کانفرنس

listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

तो के नहीं ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है ठीक। I don't care what you think, what your emotions are, I'm gonna call it a spade is a spade. कैसे करे कोई ना survive, हर कोई सोचता अपने को वाइस। बातें ही बातें हैं बस।

Tak sabia. Chodźmy.

0: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक
1: यू आर लिसनिंग FM 101 रेडियो पाकिस्तान FM 101 Tune in to the one above.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज
1: आवाज की दुनिया का दोस्त मालूम तो तफरीह का साथी मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज सुर पे जवान

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर, ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 आपके मन की आवाज, आपके दिल की धड़कन।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरारुल हक और आप लोग सुन रहे हैं मेरा मन पसंद रेडियो FM 101।
1: Continuous hits.
2: Hey, I'm crazy.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: only one station that keeps you moving. Hotwired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: मेरे प्यारे बिलाल, ख्वाहिश तो ये थी कि अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हें अपने पास देखूं, तुम्हारा हाथ पकड़कर लाहौर की सड़कों पर वैसे ही घूमूं जैसे कभी तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ घूमा करता था। मगर शायद मेरा सबसे प्यारा नवासा बहुत मसरूफ़ है अमेरिका में, मैं शदीद बीमार हूँ और शायद वक्त मुझे तुमसे बहुत दूर कर दे। मगर मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बात ही सही, तुम लाहौर को मेरी आंखों से देखो, ये शहर तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार देगा। तुम्हारा नाना, तुम्हारा दोस्त।
2: कोई शहर दसो मैनू ओए लोको, जिथे धुप भी होवे छां वरगी, जिथे पानी शहद तो मिठे होन, जिदी धरती होवे मां वरगी।

दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, हम मातकियानी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने मशरक़ वुस्ता तनाज़े के तमाम फरीकों से पाकिस्तान की इस अपील का इआदा किया है कि वो इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सालिसी की कोशिशों की राह हमवार करें। इस्लामी तआवुन तंजीम के तहत ख़वातीन से मुतल्लिक 2 रोज़ा नवी वज़ारती कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में आवाम से कल मनाए जाने वाले यौमे शुहदाए कश्मीर के मौके पर मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। और फुटबॉल आर्मी कप में अर्जेंटाइन कैंसर सिटी ने स्विट्जरलैंड को 1-1 में 3 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है।

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

This is FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Get home when they hard at the hard enough.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

जल रहा हूँ थोड़ी दूरियों में दूर कहीं, तेरे दिल में भी दबी कोई तो आतिश होगी। आ जाई है फिर से याद तेरी, प्लीज कम बैक।

there's music and then there's magic. One Above FM 101.

0: लिखी जानी चाहिए या फिर आप क्या देखते हैं कि हमारे आजकल के जो बच्चे हैं।
1: Yo, Sigalax in the dark.
2: Zeus,
1: yeah, back to rock.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

Continuous Hits.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मशरक़ी वुस्ता तनाज़े के तमाम फरीकों से पाकिस्तान की इस अपील का इरादा किया है कि वह इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सालिसी की कोशिशों की राह हमवार करें। इस्लामी तआवुन तंजीम के तहत ख़वातीन से मुतालिक 2 रोज़ा 9वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। कतर के साबिक अमीर शेख हम्द बिन खलीफा सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कैंसर सिटी में फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन स्विट्जरलैंड को 1-1 में 3 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। खबरें तफसील के साथ।
1: Hey, we'll be back after-

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

سنائے تبے السلام علیکم میں

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम ने ईरान के वजीर खारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी लाने की राह अपनाएं। इस्लामी तआवुन तंजीम के तहत खवातीन से मुतालिक 2 रोज़ा नवीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू हो गई है। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कैंसर सिटी में फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा कर सेमीफाइनल में पहुंच गया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

jazz music, and then dance magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 आपके मन की आवाज़, आपके दिल की धड़कन।

0: देखिए ड्रामा सीरीज फसाना मार्ट का जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अफ़वाह।

0: मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूं, यह है कमाल मेरा।
1: This is FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

I'm crazy.

0: आपका अपना चैनल दिल चले पंजाबी।
1: I don't know.

जनाब जनाब वेलकम बैक, खुश आमदीद जी आया नू। एक कम आज जरूर करो, प्लीज हुणे करो, आज करो, लाजिम करो। भला कम केड़ा है? असल च सारियां गल्लां तुहानू याद आउंदियां ने। मैं तो इस वास्ते करदा कि याद दहानी हो जावे, वो चेहरे, वो हस्तियां जिहड़े सानू निक्कियां होंदिया खुश वेख के खुश होंदे सन, जिहड़े साडे हेक हेक अदा नाल जुड़े हुए सन, जिन्हां ने साडी हेक हेक हरकत नू नोट किया ते सानू इंसान बनावण दे विच, तमीज़ सिखावण दे विच बहु अहम किरदार अदा किया। वह रिश्ते, वह नाते जिन्हां दी खुशियां साडे नाल हन, जिन्हां दी असी पहचान आसे, शायद उन्हां दे विच कुछ हस्तियां इस दुनिया ते नहीं होणगियां। बारिशां दा मौसम है, शायरे खामोशां कब्रिस्तान दे विच आ बा दिन, क्या असी उन्हां नूं मिलण जाने हैं? क्या असी उन्हां नूं याद करते हैं? यकीनन याद तो करते हो सें, क्योंकि असी उन्हां दा जुज़ हैं, वह साडा जुज़ हैं। लेकिन बारिशों के मौसमों के कब्रिस्तान पानी भी खलो जाता है, कुछ सारिया कबर जड़िया ने वह डिग भी जाने, कच्चिया कबर जड़िया ने उन्होंने किधरों किधरों पानी भी वड़ जाता है। तो असी अज इंज करिए, छुट्टी का दिहाड़ा है, तो शहरे खामोशा जाइए, उन्होंने मिल आवीए, दुख सुख वंड आवीए, तो जेडे उन्होंने घर हैं उन्होंने घर चैक कर आवीए, किदा ही कोई सिवी तो नहीं लगी, कोई गड़बड़ तो नहीं, उन्होंने घर की कोई दीवार डिग तो नहीं गई,

लो जी अहल जी, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन मैनू मजा आता दाना जदों केक मेरे हिस्से का मैनू मिलेगा, वरना कोई ना, बिल्कुल कोई ना। अमानत गार्ड ने सानू मैसेज किया, कॉल की, मेरे भरा बिस्मिल्ला वेलकम खुश आमदीद जी आयान। अल्लाह पाक तुम सुखी सलामत रखे, आबाद रवो, वसते रहो, मेरे मुहब्बत कर दौ मेरे प्रोग्राम के नाल, मैं मुहब्बत करदा थोड़े नाल। रुबीना जट्टी साहबा प्रोग्राम शामिल ने, रुबीना जट्टी साहबा वेलकम खुश आमदीद जी आयान, सत बिस्मिल्ला।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: दिस इज FM 101।
2: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबव FM 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101। सुनते रहिए FM 101।

दुनिया झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
3: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
4: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
3: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
5: This is FM 101.1.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Barnu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: अजी सुने जरा फसाना प्यार का,

0: देखिए ड्रामा सीरीज फसाना मार्ट का जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लार्ज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बारास्ता जन्नत बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: एहतियात बारे सारी गल समझा देंगा। सोने रब दे करम नाल ताड़े भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे
1: इंशाल्लाह ताला। जी मुश्ताक भाई, तुहाडी ईमेल प्रोग्राम विच शामिल हो गई ते सुलेमान साहब ने मशवरा भी तुहाडे जिहड़ा दित्ता है, इस मशवरे ते अमल करो, रब जरूर मेहर करेगा। सुलेमान साहब, वारी है इस ईमेल दी जिहड़ी साडी इक भैण होरां लिखी है। कहिंदे ने कि मेरा वजन बहुत वध गया, मैं दिन च सिर्फ एक वारी रोटी खानी आ पर जिसम मोटा ही हुंदा जा रिहा, टुरन फिरन नाल साह फुलदी है, बराए मेहरबानी दवाई पार्सल कर दिओ। वैसे सुलेमान साहब, मोटापा ते मैनूं वी जिहड़ा ना बहुत बुरा लगदा है, जिहड़े मोटे बंदे हुंदे ने ना इंज लगदे ने जिवें बोलण वाले मच हुंदे है, सारी स्मार्टनेस मुक जांदी है।
0: सहमा जी, मोटापे नाल सिर्फ स्मार्टनेस ही खत्म नहीं हुंदी बल्कि शुगर, जोड़ां दा दर्द, ब्लड प्रेशर ते होर दूजियां खतरनाक बीमारियां भी हो जांदियां ने। इस लई इहदा फौरी उपार करना चाहीदा है। भैन जी, तुसीं फाके ना करो, क्योंकि फाके करन नाल पिंडे विच गज़ा की कमी हो जाती है जिंदे नाल कमजोरी वध जाती है ते पिंडे विच ताज़ा खून नहीं बनता। इस लई रोटी 3 टाइम खाओ, पर गज़ा विच वड्डा गोश्त, चावल, मां दी दाल, गोभी ते घिओ, तेल विच तलियां होईयां चीज़ां दे नाल नाल बाजारी शैवा बिल्कुल ना खाओ। भैन जी, असी अपने दवाखाने ते जड़ी बूटियां नाल एक बहुत ही वधिया ते फौरी असर करन वाली एक दवाई तैयार कीती है जिहड़ी मोटे बंदे नूं दुबला पतला ते समार्ट कर देंदी है, तो कोई पुट्ठा नुकसान भी नहीं हुंदा, यानी कि कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुंदा। भैन जी, तुहानूं इही दवा पार्सल करा रहा वां, तुसीं नागे तो बगैर यह दवाई लैनी है, सोहणे रब दी मेहरबानी नाल तुहाडे मोटापे तो जान छुट जाएगी ते तुसीं बिल्कुल स्मार्ट हो जाओगे
1: इंशाल्लाह। भैन जी, तुसीं सुलेमान साहब दी दवाई जरूर इस्तेमाल करनी। भैन जी, मैं तुहानूं इक राज दी गल दसां, ओह इह वे कि मैं भी इहो दवा वरती सी ते हुण मैं रब दी मेहरबानी नाल बहुत ही स्मार्ट हो गई हां। सुलेमान साहब, ए ईमेल जनाब आसिफ लतीफ होरां लिखी है।
0: जी,
1: कहंदे ने कि मेरी उम्र 46 साल है, मैनूं असाबी कमजोरी दी तकलीफ है ते फिकर वधदी जा रही है। मैं ताकत दीआं गोलियां वी खाधीआं सन पर उन्हां गोलियां नाल दिल घबराउण लग पिआ ते मैं छड्ड दित्तीआं। सुलेमान साहब, लोकी कहंदे ने कि इस उम्र विच होण वाली कमजोरी दा कोई इलाज नहीं, तुहाडा की ख्याल है? जे मेरा इलाज हो सकदा है ते मैं दवाखाने ते आ जावां?
0: आसिफ भाई, लोकां दीआं गल्लां ते ना जाओ, क्योंकि इह गल बिल्कुल गलत है कि वडेरी उम्र दी कमजोरी दूर नहीं हुंदी। मेरे भाई, जदों शुगर नाल होने वाली असाबी कमजोरी दूर हो जाती है तो वडेरी उम्र के मर्दा की कमजोरी क्यों दूर नहीं हो सकती? मेरे भाई, गल हुंदी है तशखीस की, उस तो बाद चंगी दवा दी। जे ये दोवें गल्लां पूरियां कीतियां जान तो मरीज की सारी बीमारी ठीक हो जाती है। आसफ भाई, मैं तुहानूं ते तुहाडे वर्गे दूजे मरीजां नूं ये गल दस दियां कि ताकत वास्ते गोलियां वगैरह कदी इस्तेमाल ना करो, क्योंकि यह जिहियां गोलियां नाल गुरदे खराब हो जाते हैं। भाई जी, तुसी किसे दिन दवाखाने ते तशरीफ लियाओ, मैं तुहाडी तबीयत ते जिस्मानी हालत दे मुताबिक कोई चंगी जी दवाई लिख देंगा जिहदे नाल तुहाडी सारी परेशानी मुक जाएगी ते इंशाल्लाह तुहाडी जिंदगी खुशियां नाल भर जाएगी।
1: बेशक जी। आसिफ भाई, तुहानू सुलेमान साहब दा मशवरा मिल गया, हुण तुहाडी फिक्र मुक जानी चाहीदी है, इंशाल्लाह तुसी ठीक हो जावोगे। सुलेमान साहब, दिल करता है कि तुहाडियां सोहणियां सोहणियां गल्लां सुनदे रहिए पर की करिए, प्रोग्राम दा वेला ही मुक जांदा है। इस लई मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करनी हां कि तुसी इस प्रोग्राम दी शान वधाई ते साडे भैण भरावां नूं सेहत बारे बहुत सोहणियां गल्लां दसियां, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सरमा जी, मैं भी तुहाडा ते प्रोग्राम दी सारी टीम दा शुक्रिया अदा करना कि तुसी मैनूं भैन भरावां दी खिदमत दा मौका दिंदे हो, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सोहणे भैण भरावो, हुण तुसी सांभो कागज़ ते पेंसिल, क्योंकि मैं लिखवाण लगी हां अपना पता ते फोन नंबर। ते जनाब लिखो, सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड, लाहौर। फोन नंबर 042-377-27160, यानी 042-377-27160। मोबाइल नंबर है 03004142608, यानी 03004142608। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleman.dawakhana@gmail.com। ਪੈਨ ਪ੍ਰੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੈਨ ਪ੍ਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਾਇਮਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।

पर दिल को तुम करना छोटा जरा भी नहीं, ये मेरी इल्तजा है मशवरा ही नहीं। तुझे लगता है तुझे सब पता है मेरी जान, तू कितनी खूबसूरत तुझे ये पता ही नहीं। तू जो चाहे

सबसे पहले पाकिस्तान, जो जहां है खुश रहे जी, हमारी यही दुआ है सबके लिए और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग, पाकिस्तान से बाहर भी सबके लिए बहुत सारी दुआएं और नए ख्वाहिशात। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान।

जी 10 बज हुआ चाहते हैं 11 मिनट और आप लोगों का मेरा साथ रहे इस प्रोग्राम में। ठीक रात के 12 बजे तक तबीयत वैसे मेरी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है पता नहीं ठीक हो गई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इंतजार करने का, सुनने का। और प्रोग्राम में पहले जो टॉपिक है आप लोगों से शेयर किए देते हैं कि आपके पास एक स्टार्ट हो प्रोग्राम में आने का। रोजमर्रा जिंदगी की कौन सी बात आपको खूबसूरत लगती है? सुबह उठ के वॉक पे जाना, मेरी आवाज सुनना, मुझसे बातें करना।

यहाँ कोई हेल्दी सा नाश्ता। हम इसलिए जालिम तेरा चर्चा नहीं करते।

हाय हम इसलिए जालिम तेरा चर्चा नहीं करते माशूक आशिक कभी माशूक को रुसवा नहीं करते मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान फ्रॉम हियर वाली वेलकम टू द शो डियर आज़म मोहम्मद यूसुफ द ग्रेट शो इज गुड वॉइस इज सो नाइस अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सुनी फ्रॉम लाहौर थैंक यू सो मच मोहतरम मोहम्मद यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम आसिमा गुजरा खान से हमारे साथ मौजूद हैं अल्लाह पाक आपको सेहत वाली जिंदगी दे क्या हुआ है तबीयत को ये जो प्री मॉनसून जो है वो स्टार्ट होगी ये पिछले दो दिन से ना जितनी भीग के जो है ना रोजमर्रा जिंदगी की कौन सी बात आपको खूबसूरत लगती है जी और बारिश की खुशबू अपने किसी पसंदीदा इंसान के साथ किसी खास वजह के बिना जो है वो बात करना गरम चाय या कॉफी का पहला घूंट सुबह की पहली धूप का कमरे में आना और पूरा रोमांटिक जो है माहौल बन गया सो आप अपना कोई भी जवाब जो है हमें लिख भेज सकते हैं 4471 पर अपने सेल फोन के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे 101 लिखेंगे स्पेस देंगे अपने नाम पैगाम उस मैसेज को आप सेंड करेंगे 4471 पर facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियली पेज है और वहां पे जाके आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट्स को मैं साथ साथ शामिल करूंगा लोगों के कॉल्स को हम शामिल करूंगा 10:30 की ब्रेक के बाद लेकिन क्या लेकिन

दस बजकर 17 मिनट हुआ, साथ है आपका, मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक. एंड जस्ट इन केस यू फॉरगॉट, माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ. चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी.

यासिन के मैं एक दो सॉन्ग सुन रहा था, बहुत मजे के हैं, और दो दिन से तो वैसे माइंड में ही घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउर रहमान, क्या हाल है सर आपका? जंग से हैं बट ड्यूटी मुल्तान में कर रहे हैं, और आपका शो बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी मैसेज का।

10:01 हुआ साथ हैं आप लोगों के साथ से टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शहजादी मंजूर हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से और मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है और गैरवल सुन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप रेगुलरली सुनती हैं। अरुण राम इस्लामाबाद थैंक यू सो मच ब्रो, वेलकम।

सब कुछ यार अमानत तेरी, जिंदड़ी जान भी तेरी। मैं कोजीदा वारिस, तू है मौला, शर्म रखी हूं मेरी।

बस। हुण पता है नहीं जीना तो फिर बस बस कर 29 मिनट हुआ चाहते हैं 101 टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम।

ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। 10:30 से आते हैं जैनो फ्रॉम अटक, बेस्ट शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे फूफो लोग आए हुए हैं लंदन से, सब गए हुए हैं मिलने, बट मैं आपके शो की वजह से नहीं गई हूं जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वाला हबीबी, बहुत दुआएं हैं आपके लिए हमेशा। स्टे हैप्पी टू ऑलवेज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो जी, डेंट वगैरह कर लें, मैं आप लोगों की कॉल्स जो है वो शामिल करूंगा प्रोग्राम में। टॉपिक अगेन आप लोगों को बता देते हैं, जो लोग अभी हमारे साथ शामिल हुए हैं प्रोग्राम में, मतलब डेली रूटीन में जिंदगी की कौन सी बात आपको खूबसूरत लगती है,

जब किसी पुराने किताब या कपड़ों से यादों की खुशबू आ जाए। जब कोई आपसे पूछे आपका दिन कैसा गुजरा, बहुत सारी बातें अब मैं आपको क्या बताऊं, आप अपने हवाले से बताएंगे मुझे। आएंगे, बात करेंगे, शॉर्ट सी बात करेंगे, गपशप लगाएंगे हम लोग आप लोगों के साथ। लेकिन वो क्या है कि अदब अदा आपका ख्याल रखेंगे। Assalamualaikum. आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे घड़ी की जो टिक टिक है इसकी आवाज आ रही है।

0: जी सियाल रहमान कह रहे हैं कि नहीं मुझे क्योंकि आज से 10 हमारा स्पोर्ट्स का शो होता है, मुझे आजकल मैं बिल्कुल जो है इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स। सो फिलहाल जो प्रोग्राम में हम चल रहे हैं हम उसी पे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहु, कैसे हैं आप?
1: ठीक है यार, आप कैसे हैं?
0: मैं दरमियाना सा।
1: मैं भी दरमियाना सा।
0: अच्छा, थोड़ा से लट गया करो, थोड़ा लंबे हो जाओगे तुसी।
1: जी
0: कैसे हैं, तबीयत से ठीक है?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कौन बोल रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं?
1: नूर वली खुश मकाम पिशावर से।
0: कैसे हैं पिशावर में, हमें सुना जा रहा है?
1: बिल्कुल सुना जा रहा है। आप, मैं तो 101 का लिसनर हूं ना,
0: तो मैं कौन सा कोई यहां पे बस चला रहा हूं, मैं भी 101 पे हूं।
1: 101 पे है ना, मैं अंधा तो नहीं हूं।
0: ओ तेरी खैर, ऑन तो ठीक हो गया कम।
1: और कैसे हो? सब 101 वाला ठीक है?
0: सब 101 वाला ठीक है।
1: सदफरानी
0: सब ठीक ठाक है?
1: मैडम सदफरानी
0: जी जी जी,
1: मेरा दवा सलाम उसको दे देना। ठीक है
0: जी, ठीक है जी।
1: पिशावर में आपका बच्चा बोल रहा था।
0: अच्छा,
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक के हवाले से बात नहीं करेंगे?
1: टॉपिक क्या है?
0: टॉपिक सुना नहीं आपने?
1: नहीं नया, मैं तो अभी लगाया आप प्रोग्राम सुना।
0: वो अभी लगाया, साथ ही कॉल कर दिया, सुना ही नहीं आपने?
1: नहीं यार।
0: अच्छा, टॉपिक है कि जिंदगी में कौन सी बात आपको खूबसूरत लगती है डेली रूटीन में?
1: जिंदगी में तो कौन सी बात, बस मैं तो सिर्फ माँ को देखो सारा दिन खुश हो जाता।
0: वाए वाए वाए वाए वाए वाए। सही है, ठीक हो गया, सही हो गया।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। और इमोशनल करेंगे जी हमें भी, मुझे लगता है। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? अच्छा, और कोई गली नंबर, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर?
2: गली नंबर
0: गुलाब चौक।
2: गुलाब चौक
0: ठीक हो गया जी, ये भी सही है। थैंक यू जी। टॉपिक बारे की कहना चाहोगे?
2: टॉपिक के बारे बात ये अच्छी लग रही है,
0: चलो ठीक हो गया, चंगी वधिया गल है जी। साडे बारे दुआ करे
2: करो,
0: जी साडा नाम लाजमी याद रखना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, लेकिन साडा नाम तुसी लाजमी।
2: मैं सलाम करना दगा चौधरी ते शजाद है मेरा लाहौर वाला भाई ते जिला पी है, तो सारे हम सलाम करता
0: खा। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तुम्हारी कॉल का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया। 051-111-0101। बजकर 37 मिनट हुआ से आते हैं सामिन, और जिंदगी में कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिस पे आपको

0: हम चुप। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे।
1: तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत।
0: 0511100101 रोजमर्रा के मामलात में खुद भूल जाता हूँ जिंदगी की कौन सी बात आपको खूबसूरत लगती है रोजमर्रा के मामलात में। 0511100101 पे आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस। अस्सलाम वालेकुम सर, अफसर अली खान फ्रॉम सवाबी केपीके विलेज। कैसे सर, हाउ आर यू एंड much was your type, please play me English song or Arabic, any kind of English. अच्छा, ये 24 दिनों की क्या स्टोरी है जो अभी तक चल रही है, कुछ हमको भी तो बताएं। और हम चुप ही हैं और हम चुप ही रहे। बजकर 42 मिनट और आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में। ठीक रात के

0: 0510100101. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ji.
1: Walaikum assalam.
0: Walaikum assalam ji, kaun kahan se?
1: Ji janab e mohtaram, Naeem baat kar raha hu Lahore se.
0: Naeem, kaise hain aap? Theek hain, tabiyat se theek hai aapki?
1: Alhamdulillah, Allah ka shukr hai, aapka program sun raha hu. Takriban chand hafte pehle maine aap मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी एक बार कॉल की थी, आपसे मेरी बात हुई थी.
0: थैंक यू सो मच जी, याद है थोड़ा थोड़ा.
1: तो जब कभी टाइम मिलता है तो 101 को ट्यून करता हूँ. अभी उनकी आदाब बोल रहे थे, मैंने कहा क्या बात है.
0: क्या बोल रहे थे?
1: मैंने कहा अभी जैसे टाइम कभी मिले ना तो मैं रेडियो ऑन करता हूँ 101 को.
0: अच्छा. ठीक है,
1: तो अभी मैंने उनकी आदाब बात कर रहे थे, मैंने कहा ये तो वही बंदा है जिससे पहले भी बात हुई थी.
0: ये वही बंदा है.
1: आपके सॉन्ग सिलेक्शन की मैंने बात की थी, बहुत अच्छी होती है. ऑब्वियसली अभी भी बड़े मजे के आप सॉन्ग चला रहे थे. खासतौर पर आई डोंट नो आपको कैसे पता चल जाता है, जैसा मूड होता है ना वैसे ही सॉन्ग चल रहे होते हैं प्रोग्राम.
0: मेरा आज मूड, मुझे काफी, हमारे बड़े अच्छे एक आरजे हैं, उन्होंने ना काफी पहले मुझे कहा था कि आप अपना ना अपने मजे के लिए शो किया करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर जो सुनने वाले उनको भी अच्छा लगेगा.
1: जहरी सी बात है, जब आप खुद अपने प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे तो सुनने वाले भी ऑब्वियसली करेंगे.
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही. और सुनाए, ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? क्या करना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से?
1: आपका टॉपिक ये है कि मतलब सुबह सुबह क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है?
0: सुबह सुबह नहीं, रोजमर्रा जिंदगी की कौन सी बात आपको खूबसूरत लगती है? मतलब डेली रूटीन में वो चीज जो है रिपीटेडली होनी चाहिए.
1: अगर हम मतलब मेरी लाइफ में कुछ एक दो साल पीछे जाएं तो तब तो मेरा ये रूटीन होता था कि मुझे सुबह सुबह सबसे जो अच्छा चीज लगती थी या अच्छा काम लगता था वो ये था कि मैं सुबह उठते साथ ही ना सबसे पहले अपने वाले साहब के कमरे में जाता था. ठीक है,
0: उसके उनसे
1: मिलता था, उनको हेलो करता था. अभी अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे आमीन. तो अभी सुबह उठते साथ ही ना मैं शायद आपको पता नहीं कैसा फील हो बट मैं किसी की फोटो को देखता हूँ सबसे पहले.
0: अच्छा, माशाल्लाह.
1: हाँ,
0: बस ये कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं आपकी लाइफ में जिनका होना भी बहुत जरूरी है, और अगर ना हो तो फिर उस पे
1: देखिए, जो हमारे खासतौर पे जो हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो सबसे ज्यादा हमारे करीब होते हैं. अब जिनके पास हैं उनको तो शायद इतना नहीं पता होगा कि ये क्या रिश्ते हैं या इनकी क्या कदर है, बट जिनके पास नहीं है मुझसे पूछें कि वो रिश्ते जो अल्लाह ताला ने स्पेशली बनाए होते हैं आपकी जिंदगी में, आपके भाई बहन भी आपकी इतनी केयर नहीं करते जितने आपके माँ बाप करते हैं.
0: जी बिल्कुल, ये बड़े अनमोल रिश्ते होते हैं आपके.
1: और यकीन माने आप किसी से भी रिलेशन बना ले भाई, चाहे वो कोई दोस्त हो, लड़की हो, बिजनेस हो, व्हाटएवर जो भी हो, आपका आपको आपके रिलेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी आपका रिलेशन चलेगा. माँ बाप दुनिया का वाहिद रिश्ता है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट उसे चला सकते, वो आपका चलता रहता है विदाउट इन्वेस्टमेंट.
0: ठीक है, और ठीक है नहीं, आप तभी से ठीक है आपकी?
1: हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, प्रोग्राम आपका अच्छा लग रहा है. आज बारिश हुई थी लाहौर में, आपको बता दें आप तो इस्लामाबाद से शो कर रहे हैं, तो इस वक्त लाहौर का जो मौसम है वो बहुत औसम है, एंड औसम मौसम के साथ औसम म्यूजिक एंड औसम आज.
0: थैंक यू सो मच, प्लेजर ऑलवेज माइन. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया.
1: अल्लाह हाफिज़.
0: अल्लाह हाफिज़.

हाय फुला दे रंग काले और जब आप गाते हैं साथ तो सॉन्ग और मीठा हो जाता है। मैं शीरा को बोल के रखे ना

मुख्य कौन कहां से हमें सुन रहे जरूर बताइएगा। और स्पेशली फैसलाबाद कल मैंने आना है, सुबह सुबह आना है। First time I'm to Faisalabad. कुछ ऑफिशियल कमिटमेंट्स हैं जिस वजह से मुझे जाना है अपने बॉस के साथ। कहाँ कहाँ हमें सुना चाह रहे जी आप लोग, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं और फेसबुक पे कमेंट्स भी कर सकते हैं।

Ook is het Deswesker. Ik kan een minuut, 1-1 time, Pakistan, standard time. Wat zit er van slikken Kashmir aan? Bij aan de Islamabad station, die er hier in Pakistan, en puri dunya met zahan, zahan, dat meri awaz suni jari, sab ko welcome. Topic is die topic, again, aapko bataya deete hain, poochen, log ke topic kya hai, zindagi ki kaun si baat aapko khubsurat lagti hai, rozmarra ke maamalat mein, ki teri routine mein wo cheez ho rahi hoti hai, wo kya cheez ho rahi hoti hai, aur kyun ho rahi hoti hai, jaise ki aaj kal, बेचैनी से गुलाम फरीदा मैं ता दोजख सड़सा गुलाम फरीदा मैं ता दोजख सड़सा अगेन जी थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया मैसेज है और शहजादे मंजूर कहती हैं कि आपकी आवाज की क्या ही बात है सुरख गुलाब बेमौसम विच सुरख गुलाब जब मैं बिल्कुल ठीक होती हूं आपका प्रोग्राम सुनती हूं तो अच्छा लगते हैं लेकिन अब तबीयत खराब है तो ज्यादा अच्छा लग रहा है एक सॉन्ग ब्रेक छोटी सी और फिर वापस आते हैं लेजेंडरी वॉइसेस हैं नाहिद जी और मेहदी हसन खान सबकी आवाज चाहे दुनिया

क्या खूबसूरत लिरिक्स, क्या मीनिंगफुल बात है। और आजकल के अगर आप हिट सॉन्ग्स भी उठा के देखते हैं ना, तो दो से तीन वीक्स में उनका वो जो चार्म है ना, वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं जी, जब भी इनको आप सुनेंगे, वही ताजगी, वही बात, वही एहसास। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप सिंगर जो हैं उनको कहाँ पे रेट करते हैं, तो मैंने कहा ये सिंगर नहीं है, ये साइंसदान है। जो जो पुराने हमारे लेजेंडरी सिंगर गुजरे हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ वॉइसेस पे, कुछ म्यूजिक पे। और

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मनाजिर हुसैन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और इलाके की तरक्की के लिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगी। ख्वातीन के बारे में दो रोज़ा नवी ओआईसी वजारती कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू हुई। बलूचिस्तान के जिला वाशिक के इलाके माशकिल में फितनुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुजदिलाना हमले में 5 मजदूर शहीद हो गए हैं। और पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

Manullah, हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम दानी नशीर और फिरोज सिंध से. शो उम्दा सलाम सबको. कोई सिंधी गाना लगा दियो जी. अच्छा जी, लानवी. हाँ, शाहिद खान हमारे साथ मौजूद है जी. खूबसूरत लोगों का खूबसूरत टॉपिक हमें आज कल जिंदगी में बहुत खूबसूरत

एक सॉन्ग बिल्कुल मेरे जो है वो सिंगल क्लिक में है, लेकिन इसको मैं शामिल करूंगा 11:30 की ब्रेक में, क्योंकि ब्रेक के बाद सॉरी जब हम पोएट्री वगैरह शामिल करेंगे उसमें। तो ये पता नहीं क्यों इतना माइंड में मेरे स्टक हुआ हुआ है, क्योंकि गजल भी है बड़ी खूबसूरत वसी शाह साहब की। क्योंकि आजकल मौसम जो है वो डेली जो है वो इस्लामाबाद का दूसरा दिन है बहुत खूबसूरत हो जाता है। फिलहाल तो मैं स्टूडियो में मैं बाहर नहीं गया, लेकिन आप हैं प्रोग्राम में तो अच्छा हो गया है।

0: मिट्टी की खुशबू होती है ना बारिश के दौरान।
1: हम साथ मिलके जहां
0: इवन कि ग्रास पे घास
1: बारिश भी
0: जो मिट्टी की खुशबू होती है ना बारिश के दौरान।
1: हम साथ मिलके जहां
0: इवन कि ग्रास

चले बारिश की कोई याद, क्योंकि बारिश की याद बताएं आप। वैसे भी अब 12 से 13 मिनट रहते हैं सेगमेंट में, हम पार्टिसिपेशन कम शामिल करते हैं, हमें ज्यादा बोलना होता है। कोई बहुत ही खूबसूरत सी याद आप बताएं हमें बारिश के हवाले से। की डड्डू देखें

कुछ मैसेज है कि आप पश्तो सॉन्ग क्यों नहीं शामिल करते हैं जी, शामिल क्यों नहीं करते हैं पश्तो के सॉन्ग्स, लेकिन इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं मेरे पास इस वक्त, मेरे पास 6 से 7 ऐसे फोल्डर्स सामने मेरे ओपन है जिसमें मतलब मेरी टॉप क्लास की जो एक कह सकते हैं कलेक्शन जो है मौजूद है, एक से एक अच्छा सॉन्ग है

Yeah, now let's hear what's happening here, G. 19 मिनट और आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक. और अगर पेशावर में मेरी आवाज सुनी जा रही है तो ये तमाम उन लिस्टनर्स के लिए जो पेशावर से मुझे सुन रहे हैं जिनको पश्तो आती है, क्योंकि समझ में सिर्फ उन्हें ही आएगी.

0: मतलब डायरेक्ट ही छोड़ देता है। 0511111001। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी अस्सलाम वालेकुम सर, लाहौर से मारिया शहजादी कर
0: रही। कैसे हैं आप? ठीक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सर आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। दो हफ्ते बीत चुके हैं, मैंने कैनी भाई के शो में भी आकर बोला था, अल्लाह ताला ये जो साल है आने वाले हर साल अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में रहमतों का नजूल कर दे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में रहमतें और बरकतें ही भर दे, आपको किसी चीज की कमी महसूस ना हो। दूसरा टॉपिक पे मैं ये कहूंगी कि सर अगर किसी खास अपने की, बल्कि सबकी खैरियत होनी चाहिए, लेकिन खास अपना अगर कोई खैरियत से हो और उसका साथ होना तो जिंदगी खूबसूरत लगती है मुझे।
0: वाह जी वाह, क्या बात है। बर्थडे की जी विश करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी तक हमने मनाई नहीं है बर्थडे।
1: जी आपने आज ही कहानी में बात कर रहे थे कि वो बर्थडे मनाते नहीं है, तो लेकिन आपका हमारी तरफ से तो कहना बनता था ना कि आप हमारे इतने अच्छे आरजे, हमारे लिए हमारे स्पेशल भाई हैं। अल्लाह ताला ने ये भाई की सूरत में तोहफा हमें दिया, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे।
0: तोहफा कबूल कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। आपने कॉल की है जी लाहौर से, वो सॉन्ग में शामिल करता हूँ ना, ईद के दिन ना सही खैर सही, ईद के बाद हमने तो ईद मनानी है तेरी दीद के बाद, तो ये भी सिलसिला पेंडिंग है।

जी वेलकम करते हैं आपको स्पेशली सेगमेंट ओल्डी गोल्डी नंबर्स के साथ, कुछ आपके पसंद कुछ हमारे पसंद। कोशिश करें सुकून का ताल्लुक किसी शख्स से ना हो।

कि अपने गम की नुमाइश न कर, अपने ज़मीर की आजमाइश न कर, जो तेरा है वो तेरे पास खुद आएगा, हर रोज़ उसे पाने की ख्वाहिश न कर।

तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही है इंसान, मुस्कुराना सीख ले वजह तलाश ना कर, अपने गम की नमाइश ना कर, अपने जमीर की आजमाइश ना कर। मैं तेरा हूँ तेरी मर्जी, मुझे जैसा कर दे।

से बस इतनी सी ख्वाहिश मेरे।

मेरे हम नफस मेरे हम नवा जी। वक्त कितनी जल्दी से बदल जाता है और इस वक्त की ये चाल मुझे बहुत पसंद है कि वक्त रुकता नहीं है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई हमें हमेशा को भाई की नज़र से देखा है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके बड़े भाई हैं और उन भाई हमें सुन रहे हैं। एक वक्त होता था कि हम डेली मिला करते थे और बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप, और कभी दिल का बोझ हल्का करने, कभी कोई कह सकते हैं कोई मशवरा लेने, कोई भी जिंदगी में ऐसे मामलात हुए तो ये पूरे का पूरा घर जो है ना वो मेरे साथ ऐसे स्टैंड, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात का कोई पल हो, मैं टेंस हूं, लाइफ में दो से तीन ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए, लेकिन जिस तरह आजकल की दोस्तियां होती हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज को रियलाइज करते हैं कि नहीं, ये बहुत आगे की बात है। उमर भाई सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच उमर भाई आपके सुनने का, और आई रियली मिस यू, और सबको मिस करता हूँ मैं भी। है तो इस्लामाबाद में, लेकिन वो वाला जो एक सिलसिला था ना वो नहीं, अब जिंदगी बहुत आगे निकल गई है।

हैं तेरी दीद को, तरसी हैं इस कदर आंखें, ये तेरी दीद को तरसी हैं इस कदर आंखें, बनी हैं मेरे लिए अब तो दर्दे सर आंखें, तुझे सबूत मोहब्बत का चाहिए मेरी, तुझे ये आई नहीं क्या नजर आंखें, बहुत ही दीदनी है उसके खदो खाल सभी, हर एक नक्श से लेकिन है बाला तर आंखें। यो रास आया फकत उसका रूठना मुझसे, कि वो दिखाती है अब बात बात पर आंखें, नजर मिला के भी ना चैन लौट पाए जो, खुदा किसी को ना दे ऐसी बेजरर आंखें, कि तेरी दीद को तरसी है इस कदर आंखें, बनी है मेरे लिए अब तो दर्द सर आंखें।

थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया अमर भाई, कहते हैं जी मेरी तरफ से शकील भाई और मेहताब कुरैशी को सलाम, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और हर वो रिश्ते जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा मिस करते हैं जी हर लम्हा उस चीज़ को, उस मोमेंट को। और कि कर लूँगा जमा दौलत और ज़र उसके बाद क्या,

ले लूंगा शानदार से घर, उसके बाद क्या कर लूंगा जमा दौलत और जर, उसके बाद क्या ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या शेर सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या। एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे कमर, उसके बाद क्या। उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। शेर और सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या।

जी अब बिल्कुल लास्ट के कुछ मामलात हैं कि हम यूसुफ़ जमा थे, अभी कल की बात है। हम यूसुफ़ जमा थे, अभी कल की बात है। तुम हम पे मेहरबान थे, अभी कल की बात है। वो दिन भी थे, हम ही तुम्हारी जुबान पे थे। मौजूए दास्तान थे, अभी कल की बात है। जिन दोस्तों की आज कमी है हयात में, वो अपने दरमियान थे, अभी कल की बात है। कुछ हादसों से गिर गए मौसम जमीन पर, हम रश के आसमान थे, अभी कल की बात है। कि हम यूसुफ जमा थे, अभी कल की बात है। तुम हम पे मेहरबान थे, अभी कल की बात है। आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे जी इस दुआ, इस यकीन के साथ कि आने वाला हर पल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। जाने अनजाने में अगर कोई भी बात आपकी समखराशी का सबब बनी हो तो माज़रत चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा। कतन मकसद नहीं होता कि आप लोग हर्ट हो, लेकिन इंसान है, इंसान होने के नाते गलती हो सकती है। आहेर वंडरफुल टाइम। अगली मरतबा जब आपसे मुलाकात होगी, और जब भी मुलाकात होगी, होपफुली एक नए आज़म के साथ, और भूले नहीं होंगे आप। लेट्स प्रूव इट, ये आपने साबित करके दिखाना, यू डोंट हैव अ शॉर्ट मेमोरी। तन्हाई से छुटकारा पाने को अपनाया था तुमने, मुकद्दर है यह तन्हाई, ये न मालूम था हमें। करके तन्हाई में तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें, अकेले में होना है ये महसूस करने का दुआ। आ जाना, मिटा जाना इस तन्हाई को, के फिर से दावत हम देते हैं तुम।

तू सितारों से बहुत दूर है, मैं जानता हूं। तू सितारों से बहुत दूर है, मैं जानता हूं। अपनी मखलूक से मस्तूर है, मैं जानता हूं। लेकिन एक राज से आगाह किए देता हूं, मैं शनासा हूं तेरा, मैं तुझे जानता हूं। मैं शनासा हूं तेरा, मैं तुझे जानता हूं। मैंने मासूम बहारों में तुझे देखा है, मैंने मोहूम सितारों में तुझे देखा है। मेरे महबूब, तेरी पर्दानशीनी की कसम, तेरी पर्दानशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा है, मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा है।

तो यूं जनाब गपशप चलती रहेगी और इसके साथ साथ कोई ऐसी बात जो आपको सताए हुए हो और आप उसका हल तलाश कर रहे हो, कोई इज़्तिराब हो जो आपको मुज़्तरिब किए हुए हो, या कोई अच्छी बात जो आप चाहते हो किसी समाज तक पहुंचे, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है जनाब। आप प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, अपनी बात करेंगे और आपकी बात जो तज़िया जो समाअतें कर सकें। तो यूं एक महफिल सजी रहेगी

हुजूर शायरी का जिक्र भी किया और शायरी तो हुआ करती ही है, मेरे नाम के साथ तो अब जुड़ ही गई है शायरी और ना चाहूं भी तो वहां तक ले ही जाते हैं। खूबसूरती का जिक्र करते हैं जब शायरी में तो सरे फहरिस्त आया करती हैं आंखें। कैसी अजीब बात है कि अगर कुछ कहते नहीं हैं तो ये आंखें बहुत कुछ बयान कर दिया करती हैं। बस यूं है कि पढ़ने वाले होने चाहिए। अक्सर सुनते हैं हम के हुस्न देखने वाले की आंख में होता है, यानी कि कैसी नजर है और कैसी नजर से देखा जा रहा है और परखा जा रहा है। और दूसरा यूं भी कि आंखों को पढ़ा जाता है।

जी हाँ, जरूर तो कहा था मैं, और आंखों का जिक्र हो रहा था। तो आंखों को एक मकाम हासिल है जो मेरा रब था, वो एक कॉल ने तोड़ दिया। तो अब यूं है कि डायरेक्ट ही आंखों की तरफ चलते हैं और आंखों का जिक्र करते हैं। और आंखों का जिक्र मोहसिन नकवी कैसे करते हैं, हम वो सुनते हैं।

भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा है समंदर तेरी आंखें, भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा है समंदर तेरी आंखें, फिर कौन भला दाद तबस्सुम उन्हें देगा, रोएंगी बहुत मुझसे बिछड़ कर तेरी आंखें, भोजल नजर आती है, भोजल नजर आती है बजाहिर मुझे, लेकिन खिलती है बहुत दिल में उतर कर तेरी आंखें, अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता, भीगी हुई एक शाम का मंजर तेरी आंखें, मुमकिन हो तो एक ताजा गजल और भी कह लूं, फिर ओढ़ ना लें ख्वाब की चादर तेरी आंखें, यूं देखते रहना उसे अच्छा नहीं मोहसिन, वो कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आंखें, यूं देखते रहना उसे अच्छा नहीं मोहसिन, वो कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आंखें, भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा समंदर तेरी आंखें।

जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो।

इस दीद की साथ में कई रंग हैं लर्जा, इस दीद की साथ में कई रंग हैं लर्जा। मैं हूं कि कोई और है, दुनिया है कि तुम हो। देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी, देखो ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। ये उम्र गुरेजा कहीं ठहरे तो ये जानू, हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। हर बज़्म में मौजूए सुखन दिल ज़दगां का, अब कौन है शीरी है कि लैला है कि तुम हो। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ, एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। वो वक्त ना आए कि दिले ज़ार भी सोचे, इस शहर में तन्हा कोई हमसा है कि तुम हो।

मुझसे मत पूछ मेरे हुस्न में क्या रखा है। आंख से पर्दा जुल्मात उठा रखा है, मेरी दुनिया के मेरे गम से जहन्नुम बर्दोश, तूने दुनिया को भी फिरदौस बना रखा है।

0: मेरा नाम है आतिर अली सैयद और 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन है जिसकी बराह रास्त नशरियात आपकी खूबसूरत समायतों की नज़र कर रहा हूं। 12:00 तकरीबन 29 मिनट हुआ चाहते हैं। टेलीफोन लाइंस अब आपके लिए खोल दी गई हैं 920-2540-920-2540 और इस्लामाबाद रावलपिंडी का सिटी कोड 051 यानी 051। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
1: आवाज है जिसकी प्यारी, मेरा आवाज से कॉल करते हैं आपको शाहिद अंसारी।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब?
1: जनाब अली खैरियत से हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। हुजूर आप ठीक हैं?
1: करम मेरे मौला जी, बड़ा एहसान है परवरदिगार के, इसका कब्जे में मेरी जान
0: है। क्या फरमाएंगे हुजूर?
1: आपको पता है मुझे तो यानी गाने का शौक है और अपना, तो मैंने अपना जाती गाना एक रिकॉर्ड कराया है, अगर आप इजाजत देंगे तो गाऊंगा, वरना कोई मसला नहीं।
0: हाँ आपने बस एक मिनट के अंदर अंदर पूरा करना उसको।
1: इजाजत हो तो कह दें तुम्हें प्यार की बातें, प्यार की बातें, रो रो के गुजरते हैं मेरे किनार ये रातें, प्यार की बातें, इजाजत हो तो कह दें तुम्हें प्यार की बातें, फिर कर दिखाए तो आएगा तुमको यकीन, सागर से भी गहरा है मेरा प्यार हम नशीन, प्यार हम नशीन।
0: बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा।
1: तमन्ना है मेरी प्यार की बातें,
0: सलामत
1: हो तो कहते तुम्हें प्यार की।
0: मैं हुजूर बंद कर दूं अगर आप चुप करेंगे अब? चले बहुत अच्छा जनाब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सलामत है, कुछ आबाद रहे। अच्छा चले, आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं जनाब, आबाद रहे, खुश रहे, खुश रहे, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, सैयद आदिल सगा सलामत रहे, मौला आपको लंबी जिंदगी दे और इसी तरह लोगों के दिलों में जगह बनाते रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: शुक्रिया हुजूर, अपना नाम बताइएगा।
2: नजीर कसूरी जी लावनी इस्लामाबाद।
0: ठीक है, मेरा नाम आदिल नहीं आतिर है, आतिर।
2: ओके सर, नेक्स्ट टाइम आई एम सॉरी टू दिस मिस्टेक।
0: आतिर ठीक है। अच्छा क्या कहेंगे हुजूर?
2: आंखों को इंतजार के लम्हात सौंप कर नींदें भी कोई ले गया अपने सफर के साथ।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: बेशक ड्यूटी होती है लेकिन प्रोग्राम आपका सुने बगैर रह नहीं सकते, अपना फोन सक में सीने पे रख के आपका प्रोग्राम सुनता हूँ जी इंशाल्लाह।
0: सलामत रहें जी, सलामत रहें, आबाद रहें, आबाद रहें। और कुछ कहना चाहेंगे?
2: बस बाकी दोस्त अहबाब लिसनर्स वे इसका वेटिंग होते हैं कि कॉल उनके मिल जाए, उनका हक है, उनका राइट है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर,
0: सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब
3: क्या कहते हैं आपकी खबर की बात कर रहे हैं?
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब?
3: अल्हम्दुलिल्लाह
0: मैं अच्छा, अच्छा। क्या कहेंगे हुजूर?
3: माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम हमेशा की तरह।
0: बहुत शुक्रिया।
3: सर एक तो बात यह है कि अभी तू सब अगर सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश किया है कि शामिल हो तो अपने वो नज़्म जरूर सुनाएं। मेरे घर के पिछवाड़े एक पड़ोसन रहती है, उनकी अपने लिखी नज़्म बड़ी बेहतरीन है, मैं बोल रहा
0: हूं। ठीक है,
3: तो मैं शामिल करना चाहता हूँ
0: करें करें करें
3: इससे पहले कि मुझे वक्त मिला था रखते मेरे होठों पे मेरे प्यार का लम्हा रखते हल्क से अब तो उतरता नहीं अश्कों का नमक अब किसी और की गर्दन पे ये दुनिया रखते रोशनी अपनी शुबाह की बुला दे न कहीं अपने सूरज के सरहाने मेरा साया रख दे मुस्तलेले मेरे किस्तों पे खरीदे हुए दिन मेरे लम्हे में मेरा सारा जमाना रख दे हम जो चलते हैं तो खुद ही बना बनता चला जाता है लाख मिट्टी में छुपा कर कोई रास्ता रख दे और पता है कि मुझको आजादी मिली थी तो कुछ ऐसे नाफिक जैसे कमरे से कोई सेम में पिंजरा रखे
0: बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा
3: बहुत अच्छा सलामत
0: रहे सलामत रहे हाँ बाद में हाँ बाद में

हुजूर, हमारी जिंदगी में जो अदवार गुजरते हैं उसमें बहुत सी यादें हुआ करती हैं जो जो मुनक्कश रहती हैं, हो जाया करती हैं हमारे हमारे वजूद के पिनहा खानों में। वो जो हरूफ हुआ करते हैं, वो जो जुमले हुआ करते हैं, जब हम उनको कभी दोबारा पढ़ते हैं तो हमें उस दौर में ले जाते हैं और वो दौर फिर से जिंदा हो जाता है। कैसी अजीब बात है कि हम इंसान उस दौर को महसूस कर सकते हैं। हर गुजरते हुए वक्त में खुशबू हुआ करती है, एक लम्स हुआ करता है जो हमारे साथ रह जाता है, और जब कभी कुछ वैसा फिर हमारी ज़िंदगी में गुजरता है तो हमें वो वक्त याद आ जाता है। कई अजनबी मेरी राह में, कई अजनबी मेरी राह में, कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूँ गुजर गए, कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूँ गुजर गए, जिन्हें देखकर ये तड़प हुई तेरा नाम लेके पुकार लूं, फिर कोई चेहरा दिखे तो वो खदोखाल याद आ जाते हैं, कोई खुशबू माहौल को मुअत्तर कर रही हो तो हम उस खुशबू से अपना कोई गुजरा हुआ लम्हा मंसूब कर लिया करते हैं, कोई मौसीकी हो तो हम आंखें बंद करके तखय्युल की दुनिया में तसव्वुर के जोर पर उसी दौर में चले जाते हैं। इंसानों का बड़ा असासा हुआ करती हैं ये तमाम चीज़ें और इस तरह के बहुत से जज्बात। कैसी अजीब बात है कि हम अपने जज्बात को बेजान अशिया के साथ मंसूब रखते हैं और हमें यूँ लगता है कि उन बेजान अशिया में हमेशा ज़िंदगी रहेगी, हमेशा वो लम्हे ज़िंदा रहेंगे जब तक जब हम चाहेंगे उन लम्हों तक पहुंच जाएंगे, उन लम्हों को फिर से जीने लग जाएंगे। जितने भी दिन गुजर जाएं, जितना भी वक्त बीत चुका हो, वो बेजान अशिया ज़िंदगी डाल दिया करती हैं, पैदा कर दिया करती हैं उन लम्हों में, और वो लम्हे सामने आन खड़े होते हैं।

दिनों बाद तेरे खत के उदास लफ्जों ने तेरी चाहत के जायकों की तमाम खुशबू मेरी रगों में उंडेल दी है। बहुत दिनों बाद तेरी बातें तेरी मुलाकात की धनक से दहकती रातें उजाड़ आंखों के प्यास पाताल की तहों में विशाल वादों की चंद चिंगारियों को सांसों की आंच देकर शरीर शोलों की सरकशी के तमाम तेवर सिखा गई हैं। तेरे महकते मुहीन लफ्जों की आबशारे बहुत दिनों बाद फिर से मुझको रुला गई हैं। बहुत दिनों बाद मैंने सोचा तो याद आया कि मेरे अंदर की राख के ढेर पर अभी तक तेरे जमाने लिखे हुए हैं, सभी फसाने लिखे हुए हैं। बहुत दिनों बाद मैंने सोचा तो याद आया। तो याद आया कि तेरी यादों की किरचियां मुझसे खो गई हैं। तेरे बदन की तमाम खुशबू बिखर गई है। तेरे जमाने की चाहतें सब निशानियां सब शरारतें सब हिकायतें सब शिकायतें जो कभी हुनर में ख्याल थी ख्वाब हो गई हैं। बहुत दिनों बाद मैंने सोचा तो याद आया कि मैं भी कितना बदल गया हूँ बिछड़ के तुझसे। बिछड़ के तुझसे कई लकीरों में ढल गया हूँ। मैं अपने सिगरेट के बेइरादा धुएं की सूरत हवा में तहलील हो गया हूँ। हवा में तहलील हो गया हूँ। ना ढूंढ मेरी वफा के नक्शे कदम के रेजे कि मैं तो तेरी तलाश के बेकिनार सहरा में वहम के बेअमा बगोलों के वार सहकर उदास रहकर न जाने किस राह में खो गया हूं। बिछड़ के तुझसे तेरी तरह क्या बताऊं मैं भी, न जाने किस किस का हो गया हूं। बिछड़ के तुझसे क्या बताऊं मैं भी, न जाने किस किस का हो गया हूं। बहुत दिनों बाद मैंने सोचा तो याद आया मैं भी कितना बदल गया हूँ, कई लकीरों में ढल गया हूँ, न जाने किस राह में खो गया हूँ। बिछड़ के तुझसे तेरी तरह क्या बताऊँ मैं भी, न जाने किस किस का हो गया हूँ, न जाने किस किस का हो गया हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने सोचा तो याद आया

तुम्हें क्या जिंदगी जैसी भी है, तुम्हें क्या जिंदगी जैसी भी है, तुमने इसके हर अदा से रंग की मोजे निचोड़ी हैं। तुम्हें तो टूट कर चाहा गया चेहरों के मेले में, मोहब्बत की शफक बरसी तुम्हारे खालो खत पर। आईने चमके तुम्हारी दीद से, खुशबू तुम्हारे पैरहन की हर शिकन से इज्न लेकर हर तरफ वहशत लुटाती थी। तुम्हारे चाहने वालों के झुरमट में सभी आंखें तुम्हारे आरज़ो लब की कनीजें थीं। तुम्हें क्या तुम्हें क्या तुमने तुमने हर मौसम की शहरग में उंडेले जायके अपने। तुम्हें क्या तुमने कब सोचा कि चेहरों से अटी दुनिया में तन्हा सांस लेती हांपती रातों के बेघर हम सफर कितनी मुशक्कत से गिरेबाने सहर के चाक सीते हैं। तुम्हें क्या तुमने कब सोचा कि तन्हाई के जंगल में स्याह लम्हों की चुपती किरचियों से कौन खेला है। तुम्हें क्या तुमने कब सोचा कि चेहरों से अटी दुनिया में किसका दिल अकेला है।

0: मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन है। 12:52 हुआ चाहते हैं। अपने पैगाम भी पहुंचाइएगा मुझ तक 4471 पर। और पैगाम के आगाज़ में अगर आप 101 लिखेंगे तो ही आपका पैगाम मुझ तक पहुंचेगा। इसके साथ साथ facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान या फेसबुक पर आप fm101 चैनल पाकिस्तान लिख कर सर्च करेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा। उस पेज को लाइक भी कर लीजिएगा। स्टेटस अपडेटेड है आतिर अली सैयद और 101 इंटरनेशनल के नाम से। उस पर कॉमेंट कीजिएगा, प्रोग्राम में शामिल करूँगा। फिल वक्त एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: बहुत अच्छा हूँ जनाब।
1: बुजुर्गों की तबीयत अब बेहतर है?
0: जी अल्हम्दुल्ला अभी बेहतर है। आपकी दुआओं की जरूरत है।
1: अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, पूरे खानदान को।
0: आमीन।
1: प्रोग्राम के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि हमेशा की तरह आपका शो बहुत अच्छा रहा है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: स्टार्टिंग भी आपका बहुत अच्छा था।
0: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।
1: अरे एक रिक्वेस्ट है, अहमद फराज गजल की, अहमद फराज साहब की गजल है वो आखिर का, उसका एक मकता मुझे याद है जो उन्होंने लिखा था।
0: जी बताइए।
1: कौन देता है किसी का उम्र भर का साथ फराज, जनाजे वाले भी कंधा बदलते रहते हैं। ये मुकम्मल अगर गजल आपके पास है तो प्लीज।
0: ठीक है। कौन देता है आगे क्या?
1: कौन देता है किसी का उम्र भर का साथ फराज, जनाजे वाले भी कंधे बदलते रहते हैं।
0: अच्छा, वैसे बहुत से शेर वैसे भी मंसूब कर दिए जाते हैं फराज और फराज साहब और मोहसिन साहब के साथ।
1: आपकी नहीं ये वैसे बड़ी मशहूर है गजल, पता नहीं किसकी है ये।
0: हो सकता है उन्हीं की हो, मुझे तो मैंने वैसे ही बात ऐसा ही है, ऐसा ही है।
1: तो ये गजल अगर सुना दें तो वो दूसरी है वो वाला मलिक साहब ने गाई है शायद।
0: मैं फरमाइश नहीं चलाता हजूर, फिर आप क्यों शर्मिंदा करते हैं? क्या
1: चले, सॉरी सर, सॉरी।
0: सलामत रहे, सलामत रहे।
1: कौन सुनने वाले को मैं चर्चा सामने।
0: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, की हाल है? ठीक हो?
0: अच्छा हूँ जनाब, अच्छा हूँ जनाब। कौन है, कहाँ से?
2: सर बोल रहे हैं, बोधी जट सर।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब
2: जी। सर शुक्र अल्लाह पाक, सर आप सदा सलामत रहे सर। माशाल्लाह सोना प्रोग्राम और सोनिया गल्ला सर कर रहे हैं।
0: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: और सर जेडे तुसी शेर शायरी कर रहे हैं, ये क्या बात है सर। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, उससे तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे सर।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: सर सैयद बादशाह खुरम साहब शो करते हैं इस्लामाबाद 101 ते, सर उन्होंने किधर शो होंगे?
0: ये मुझे मालूम नहीं है, मैं बाहर से पता करके आपको बता दूंगा, क्योंकि हम तो एक ही दफ़ा आते हैं हफ्ते में और अपने प्रोग्राम का पता होता है, बाकी स्केड्यूल का मुझे मालूम नहीं है।
2: ठीक है सर, सदा सलामत रहें सर।
0: सलामत रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया।
2: अस्सलाम
0: वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: जनाब
3: हमीद गुलार कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं जनाब? ठीक हैं
3: आप? ठीक हैं, खैरियत से?
0: मैं अच्छा हूँ जनाब।
3: सर मैं सर आफरीदी साहब का गजल सुनाते हैं आपको। कहते हैं कि जगह की कैद नहीं थी, कोई कहीं बैठे,
0: अच्छा
3: जहाँ मकाम हमारा तो हम वहीं बैठे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ठीक किया।
3: अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है, अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं बैठे,
0: कभी नहीं बैठे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
3: बड़ी मेहरबानी। अफजल खान साहब की गजल
0: जी, इरशाद
3: शाह हैं।
0: वो कोई कोई साहब एक साहब आए थे आतिफ अब्बासी, उन्होंने उन्होंने आपसे फरमाइश की थी, वो कह रहे थे पड़ोसन कोई उनके मल उन्होंने कहा जी हमीद गुल साहब आए तो वो उन्होंने अपनी पड़ोसन पे गजल लिखी थी या नज़्म लिखी थी,
1: वो सुन बड़ा बेहूदा सा ख्याल है।
0: फिर रहने
1: नहीं, वो मैं सुना चुका हूँ, वो ऐसी बात नहीं,
0: मुझे शरारत सूझ रही थी उनसे भी, तो उनसे शरारत मैंने की नहीं, मैंने आपसे कर दी।
1: वो मैं आपको सुना देता हूँ।
0: अच्छा,
1: वो थे कि मेरे घर के पिछवाड़े एक पड़ोसन रहती है,
0: ठीक है,
1: ये देखिए एक नज़्म है मेरी, कि मेरे घर के पिछवाड़े एक हसीना रहती है, मैं उसको पड़ोसी कहता, मैं उसको पड़ोसी कहता हूँ, वो मुझको पड़ोसन कहती है।
0: समझ गया, मैं समझ गया, ठीक हो गया।
1: नहीं सुने हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने एक मावरे को बांधा था और बड़ी खूबसूरती से बांधा था कि मेरे घर के पिछवाड़े एक हसीना रहती है, मैं उसको पड़ोसी कहता हूँ, वो मुझको पड़ोसन कहती है।
0: वाह वाह वाह,
1: आप मिश्रा देखिएगा कि कर लेता हूँ मैं भी स्नान उसकी गहरी आंखों,
0: वाह वाह वाह,
1: कर लेता हूँ मैं भी स्नान उसकी गहरी आंखों में, उनके हाथ तो वैसे भी गंगा उल्टी बैठी।
0: अच्छा,
1: जहाँ गंगा गंगा उल्टी बहती है वो बस वही है। बहरहाल
0: ठीक है,
1: मैंने शुरू में कहा कि एक बेहूदा सा ख्याल है, लेकिन बात कहीं ना कहीं कुछ चीजों को हो जाता है। बहरहाल
0: सही,
1: लेकिन खूबसूरत गजल है अब्दुल खान साहब, कहते हैं कि एक तनासुब से मुझे खल्के खुदा खींचती है।
0: वाह वाह वाह, एक तनासुब से मुझे खल्के खुदा खींचती है,
1: दिल देती है जरा और जरा खींचती। पानी मकदार में कम आने लगे तो समझो, पानी मकदार में कम आने लगे तो समझो, आंख अबरू के मसामों से हवा
0: खींच। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा।
1: पानी मकदार में कम आने लगे तो समझो, आंख अबरू के मसामों से हवा खींचती है, और भीड़ में हाथ छुड़ाऊं तो सभी नाती करा।
0: भीड़ में हाथ
1: छुड़ाऊं तो सगी माँ की तरह, बद्दुआ दे के मुझे कोई दुआ कहीं।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: अरे मेरी शायरी, मैं यूसुफ सानी तो नहीं,
0: मैं यूसुफ सानी
1: शायरी, मैं यूसुफ सानी तो नहीं, क्यों जुलेखा की तरह मेरी कदा खेल।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: और मुझसे जंदान के कैदी को खबर क्या के हुआ, मुझसे जंदान के कैदी को खबर क्या के हुआ, सांस लेने में मदद करती है या खींचती है।
0: बहुत अच्छा।
1: और इस गजल का आखिरी शेर था कि एक जैसी है खुदा की भी गजल की भी जमी, एक जैसी है खुदा की भी गजल की भी जमी, अपने मरकज में सभी को ये गला खींच।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सलामत रहे, आबाद रहे।
1: अच्छा, आपने मुझे बुला दिया, चलें नेक्स्ट प्रोग्राम,
0: आबाद रहे, आबाद रहे, बहुत शुक्रिया।

आपके हम क्या प्यास के मारे भी नहीं आएंगे। हम क्या प्यास के मारे भी नहीं आएंगे। यम बयम आप पुकारे भी नहीं आएंगे। रायगानी का वो आलम है कि यूं लगता है, रायगानी का वो आलम है कि यूं लगता है, मेरे हिस्से में खसारे भी नहीं आएंगे। इतनी बेजार हैं आंखें कि खुदा जानता है, इतनी बेजार हैं आंखें कि खुदा जानता है, हमको अब ख्वाब तुम्हारे भी नहीं आएंगे। और हालत असल में लगता है खदो खाल मेरे, हालत असल में लगता है खदो खाल मेरे, अब तेरा जंग उतारे भी नहीं आएंगे। अब तेरा जंग उतारे, जंग उतारे भी नहीं आएंगे। कोई गिरदाब नहीं आएगा दौराने सफर, कोई गिरदाब नहीं आएगा दौराने सफर, और सितम ये है किनारे भी नहीं आएंगे। और ऐसे छोड़ेंगे तेरा शहर के हम, कि हम उसकी तरफ ऐसे छोड़ेंगे तेरा शहर के हम उसकी तरफ, गर्दिशे वक्त के मारे भी नहीं आएंगे।

मुझे अब कुछ नहीं कहना, मुझे अब कुछ नहीं कहना। समंदर में उतरने का इरादा अब नहीं बाकी, तुम्हें हर हाल में पाने का वादा अब नहीं बाकी। मुझे अब कुछ नहीं कहना। सुनो जाना, बिछड़ने के लिए तुमने बहाना जो किताबों से निकाला है, कसम ले लो, कसम ले लो कि इसका हर हवाला हर किसी का देखा भाला है। कसम ले लो, तुम्हें कह तो दिया फुरकत का घाव अब नहीं सहना। मुझे मुझे अब कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। ना वो ख्वाब है ना ख्वाब की ताबीर बाकी है, न गाँव की वो नटखट शोख चंचल हीर बाकी है। सहना मुझे मुझे अब कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। ना वो ख्वाब है ना ख्वाब की ताबीर बाकी है,

हमारा साथ देती हैं मरीना लाहौर से सलाम पेश करती हैं वालेकुम अस्सलाम और अरूद चौधरी हैं आपने एक गज़ल लिख भेजी है अहमद मदीन कासमी साहब की और उसके एक दो अशआर पढ़ देता हूँ तुझे खोकर भी तुझे पाऊँ जहाँ तक देखूँ हुस्ने यज़दा से तुझे हुस्न बताऊँ जहाँ तक देखूँ नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं तुझे खोकर भी तुझे पाऊँ जहाँ तक देखूँ अच्छा इसमें कुछ गलती है मेरे ख्याल से इसको मैं ठीक कर चुका हूँ आमिना मुसर्रत हुसैन है और कहती हैं आवाज़ शो नहायत उम्दा था कैरी ऑन ठीक है जी बहुत शुक्रिया राना है हमारे साथ और कैसर आपका नाम है फैसलाबाद से सलाम पेश किया आपने वालेकुम अस्सलाम अली है शेखपुरा से और सना गुल है आपने सलाम लिख लीजिए वालेकुम अस्सलाम अम्बरीन है हमारे साथ और आपने वेलकम किया बहुत शुक्रिया अच्छा अरूज ने दोबारा एक मैसेज किया है कि ये गज़ल ज़रूर पढ़िएगा कि मैं शामिल करता हूँ मुझे कुछ फॉर्मेट भी इस किस्म का होता है यहाँ पर कि जो उर्दू लिखी होती है वो सही से समझ नहीं आ रही होती है मैं कोशिश करता हूँ जो गज़ल आपने भेजी है उसको मैं शामिल कर सकूँ अच्छा जी आपने नाइस वॉइस लिखा है और मुझे लगा न्यूयॉर्क सिटी से NYC लिखा सना गुल ने कहा जी NYC शो और मुझे लगा न्यूयॉर्क सिटी से मैसेज आया है तो बहुत शुक्रिया जी सलामत है माजवीन है हमारे साथ और जीमल सुनती हैं हमाद खान हमारे साथ हैं हुमा खान है इसके अलावा हमारा साथ दे रहे हैं ज़ियाउर रहमान झंग से सुन रहे हैं और ड्यूटी पर मौजूद हैं रावलपिंडी से एक साहब ने मैसेज किया और जनाब ये निक नेम्स मैं शामिल नहीं करूंगा आप अपना नाम लिखें जो आपका खूबसूरत नाम होगा वो ज़रूर शामिल करूंगा शहजाद अब ये नाम था जी लकी बॉय मैं कह ही देता हूँ अब ये क्या शामिल करूँगा कैसे लकी हैं आप ये बता दें ताकि हम भी कोई उसमें हिस्सा डालें अपनी लक का ठीक है जी शहजाद राजपूत हैं हमारे साथ लाहौर से और कहते हैं कि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है और आप एक आपने ठीक है जनाब आपका पैगाम खूबसूरत है जिसको मैं ऑनर नहीं कर सकता बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का और इसके अलावा हमारा साथ दे रहे हैं परवेज सियालकोट से सलाम पेश किया आपने वालेकुम अस्सलाम

वैशाली से ज़ियाउल्लाह खान साहब हैं हमारे साथ, और कह रहे हैं जनाब सुबह तक मैं प्रोग्राम सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया हुजूर, आप सुबह तक सुनते हैं, और बाकी तमाम समाजों का भी बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये आपके पैगामात थे, अब तक के मज़ीद आने वाले पैगामात को भी आने वाले वक्त में शामिल करूँगा।

क्या है कि जब हम उन तलखियों को तस्लीम कर लिया करते हैं तो एक दौर गुजरने के बाद मालूम पड़ता है कि चंद आरजुएं थी हमारी अपनी जात के अंदर पनपती हुई, परवान चढ़ती हुई, जो हमने जमाने की रीति रिवाज के बरखिलाफ पाल रखी थी शायद, या कुछ ऐसा है कि हम इंसान चूंकि इरादा अख्तियार रखते हैं, हमारे तखय्युल की तसव्वुर की वसत बहुत है तो कुछ भी सोच लिया करते हैं, और एक जोश भी हुआ करता है हमारी जात के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर देने का। अच्छा है ऐसा सब कुछ, इंसान के लिए एक राह खुल जाती है, रास्ते बनते चले जाते हैं, लेकिन मोहब्बतों के कायदे कुछ और हुआ करते हैं।

यहाँ होना ना होना है, ना होना है ना होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना हो जाए। मोहब्बतों के कायदे भी मुख्तलिफ हुआ करते हैं और मोहब्बतों के रास्ते भी। अक्सर कहा करता हूँ कि मोहब्बत करने वाले यूँ समझते हैं कि वो दीगर लोगों की तरह ही हैं, लेकिन वो कुछ मुख्तलिफ हो चुके होते हैं। और जो बदलाव उनकी ज़ात के अंदर हुआ करता है वो वही लोग पहचान सकते हैं जो इस जज्बे से आशना होते हैं। कुछ नज़रें हुआ करती हैं जो झूम जो एक झुरमट में किसी मोहब्बत वाले को पहचान लिया करती हैं, किसी हजूम में। वो जो आंखों का जिक्र हुआ था, जो आंखें बहुत कुछ बयान कर दिया करती हैं, कुछ ऐसे हुआ करते हैं जो उन आंखों को पढ़ लेते हैं। कुछ इश्क वाले लोग हुआ करते हैं, वो लोग जो बहुत सी तमन्नाएं, बहुत सी आरजुएं अपनी जात के अंदर लिए थे और फिर वो आशना हुए दुनिया की हकीकतों से, कायनात की हकीकतों से, और उन्होंने तस्लीम किया उसको। यहीं तक हुआ करता है हम इंसानों का जोर, जब तक हम तस्लीम नहीं कर लेते हैं, जब तक हम आजिज नहीं हो जाया करते हैं। शायद दर हकीकत हम इंसानों को आजिज ही बनाया गया है और उसी आजिजी तक पहुंचाने के लिए हमें ये मुसाफत पेश आती है। और हमें मालूम ही नहीं हुआ करता कि क्या रखते सफर बांधना है इस मुसाफत के लिए। तो खाली जहन आया इंसान इस दुनिया में जो कुछ मैसर आता है वही रखते सफर बांधता चला जाता है, यहाँ तक कि इन जज्बों से आशना हो जाता है। मोहब्बत का जज्बा और फिर आरजुएं, तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहां साथ। तमन्नाओं की जो वसत हुआ करती है उसकी खबर भी हम रखते नहीं हैं और उनको पालते भी हैं।

Ah, perdi. यूं है कि ये जज्बात बदल भी जाते हैं. कभी जो चेहरे बहुत खूबसूरत लगते थे, फिर वो बदनुमा लगने लगते हैं. और एक वजह तो ये भी हुआ करती है कि सोच का आईना धुंधला हो, तो फिर वक्त के साथ चांद चेहरों के खदो खाल बिगड़ जाते हैं. लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुआ करता है कि हमारे अपने तखय्युल में बहुत कुछ बदल चुका होता है.

आरजुएं बदल चुकी होती हैं या हम समझ जाते हैं इस कायनात के कुछ कवानीन को, या फिर मोहब्बतों के कवानीन को। धीरे धीरे वो आरजुएं मफकूद होने लग जाती हैं। किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला, यहां किसी को भी कुछ हसबे आरजू ना मिला, किसी को भी। यहां किसी को भी कुछ हसबे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला। गजाल इश्क सरे सुबह डूबे मिशगां पर, कब आंख अपनी खुली और लहू लहू न मिला। चमकते चांद भी थे शहर शब के एवा में, चमकते चांद भी थे शहर शब के एवा में। निगारे गम सा मगर कोई शमा रो न मिला, और उन्हीं की रमज चली है गली गली में, यहां उन्हीं की रमज चली है। जिन्हें इधर से कभी इसने गुफ्तगु न मिला, उन्हीं की रमज चली है गली गली में, यहां जिन्हें उधर से कभी इसने गुफ्तगु न मिला। फिर आज हम कदाए दिल से लौट आए हैं, फिर आज हमको ठिकाने का हम सबू न मिला। फिर आज मैं कदाए दिल से लौट आए हैं, फिर आज हमको ठिकाने का हम सबू न मिला। यहां किसी को भी कुछ हसबे आरजू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला।

हम एक दूसरे से मिलते तो किस तरह मिलते हैं? हम एक दूसरे से मिलते तो किस तरह मिलते? जमीन पे आग थी, तारे लहू में लुट रहे थे, हवा के हाथ में खंजर था और फूलों की फटी फटी हुई आंखों में एक दहशत थी। इरादे टूटते जाते थे और उम्मीदें सारे दश्त में बिखरी थी, इस तरह जैसे जैसे निशान भटके हुए काफलों के रह जाएं। हमारे पास से लम्हे गुजरते जाते थे, कभी यकीन की सूरत, कभी गुमा की तरह, उभरता डूबता जाता था वसवसों में दिल, हवाएं तुंद में कश्ती के बादबां की तरह। अजीब खौफ का मंजर हमारे ध्यान में था, सरों पे धूप थी और महर साहिबान में था। चिराग बुझते थे लेकिन धुआं न देते थे, नहीं थी रात मगर रत जगा मकान में था। हरूफ भीगे हुए कागजों पे फैले थे, था अपना जिक्र मगर अजनबी जबान में था। नजर पे धुंध का पहरा था और आईना किसी के अक्से फसूं साज के गुमान में था। हम एक राह पे चलते तो किस तरह चलते, तेरी जमीन किसी और ही मदार में थी, मेरा सितारा किसी और आसमान में था। हम एक दूसरे से मिलते तो किस तरह मिलते, समय का तेज समंदर जो दरमियान में था।

0: जी हजूर, मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और मुसाफत शब एफ एम 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
1: अनिला बात कर रही हूँ लाहौर से। आप कैसे हैं?
0: मैं अच्छा हूँ, आप ठीक है?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करूँ जो जो जहाँ सुन रहा अल्लाह ताला सबको सलामत रखे।
0: आमीन।
1: खूबसूरत गुफ्तगू और आप जो बीच में गुफ्तगू कर होते हैं, ये मतलब इस प्रोग्राम के वजह से जो लोगों को इतनी नॉलेज मिल रही होती है और कई लोगों के गम गलत हो जाते हैं इस तरह से।
0: बस यही है। सही है।
1: तो अच्छा लगता है।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: तो कुछ पढ़ना चाहूंगी
0: जी। इरशाद।
1: दुनिया के शौक भरना चाहिए

0: आज देखा ये चिचकू देख,
1: आज का दिन गुजर न जाए,
0: गुजर न जाए ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए के।
1: बहुत अच्छा।
0: जी जलाता हूँ और ये सोचता हूँ, गाएगा ये हुनर न जाए कहीं।
1: बहुत अच्छा।
0: आओ कुछ देर रोही ले ना सर, आओ कुछ देर रोही ले ना सर, फिर ये दरिया उतर न जाए।
1: और एक शेर जो आपने बीच में छोड़ा, आरजू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं,
0: न जाए कहीं।
1: बात
0: खूबसूरत, उसको गुनगुनाया भी बड़ा खूबसूरत किया।
1: जी हाँ, जी हाँ, बहुत खूबसूरत
0: मैडम ने, बड़ा खूबसूरत उसको गाया। उनके बाद भी किसी और ने भी गाया लेकिन मैडम ने बहुत खूबसूरत गाया।
1: बेशक ऐसा ही है।
0: और अभी आपके कॉलर आए थे जो पूछ रहे थे कि खुर्रम बेग का शो किस दिन होता है। जुम्मे के दिन रात 12 बजे, यानी अगले दिन हफ्ता शुरू हो जाता है।
1: ठीक है, बहुत शुक्रिया।
0: जैसे आतर का भी
1: ठीक है,
0: और जबरदस्ती
1: जैसे आतर का भी बताती चले।
0: हाँ, जैसे कि आतर कभी हफ्ते की मिडनाइट यानी अतवार की मिडनाइट यानी कि पीर शुरू हो रही होती है।
1: ठीक है, बिल्कुल सही है।
0: आतर की रात 12 से 2 बजे तक।
1: ठीक है, आपने अनाउंसमेंट जी हाँ आपने अनाउंसमेंट कर दी, बहुत शुक्रिया आपका।
0: करना चाहिए ना
1: जी, बिल्कुल करना चाहिए,
0: और ज्यादा कॉलर आने चाहिए और सुनने वाले जो पहली दफा सुनते हैं आतर को उनको अच्छी तरह से पता चल जाए।
1: बल्कि मैं थोड़ा सा महसूस कर रहा था कि मुझे पता होना चाहिए था खुर्रम का प्रोग्राम कब होता है, और आपने आसानी कर दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हाँ जी,
0: अच्छा
1: नहीं, सही कह रहा हूँ मैं वाकई में, क्योंकि मैं इस इदारे से मंसूब हूँ और एक प्रेजेंटर ने आके दूसरे मेरे बारे में कोई पूछेगा और वो तो शायद ही किसी को पता हो, लेकिन खुर्रम एक जाने माने प्रेजेंटर हैं और मुझे मालूम नहीं था, तो मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई और आपने वो आसानी कर दी। मैंने आपका कोई गम गलत किया, आपने मेरा कर दिया, अच्छा किया।
0: एग्जैक्टली।
1: सलामत रहे।
0: तो होता हूँ ऐसी याद के अक्सर आज इसको आके कोई कॉलर पूछते हैं तो उनको दूसरे का नहीं मालूम होता प्रोग्राम का, बहुत जल्दी का ना। हाँ। तो अगर कोई बता दे तो अच्छी बात है, बताना चाहिए। बड़ा खूबसूरत शो करते हैं खुर्रम भी, और आपका तो फिर है ही खूबसूरत प्रोग्राम। खास तौर पे शायरी के हिसाब से। वैसे मुझे ये पूछता था कि मेरा ख्याल है सज्जाद खान साहब अब नहीं कर रहे शो।
1: ये भी मुझे मालूम नहीं है, देखिए आपने एक आसानी की है तो दूसरी पैदा कर दी है मुश्किल।
0: कोई बात नहीं, वो भी पता चल जाएगा। कोई ना कोई आके बता देगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अब उनका प्रोग्राम सुनने को नहीं मिलता। वो भी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम लेके आते थे। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे उन्हें जहाँ भी, और आपको भी अल्लाह ढेरों खुशियाँ और जिंदगी तंदुरुस्ती दे।
1: बहुत
0: ही दुआ, अल्लाह हाफिज़।

ये तेरी आंखों की बेजारी है, लहजे की थकन, कितने अंदेशों के हामिल है ये दिल की धड़कन है। पेशतर इसके कि हम फिर से मुखालिफ संत को बेखुदा हाफिज कहे चल दें झुका कर गर्दने, आओ आओ उस दुख को पुकारें जिसकी शिद्दत में हमें इस कदर एक दूसरे के गम से वाबस्ता किया। वो जो तन्हाई का दुख था, तल्ख महरूमी का दुख, जिसने हमको दर्द के रिश्ते में पैबस्ता किया, वो जो इस गम से ज्यादा जान गुसल कातिल रहा, वो जो एक सेले बिलांगेज था अपने लिए, जिसके पल पल में थे सदियों के समंदर मोजन, चीखती यादें लिए उजड़े हुए सपने लिए, मैं भी नाकाम वफा था तू भी महरूम मुराद। हम ये समझे थे कि दर्द मुश्तरक रास आ गया, तेरी कोई मुस्कुराहट कह कहों में ढल गई, मेरा गुमगुश्ता सुकून फिर से मेरे पास आ गया। तपती दो पहरों में आसूदा हुए बाजू मेरे, तेरी जुल्फें इस तरह बिखरी घटाएं हो गईं, तेरा बर्फीला बदन बेसाख्ता लोदे उठा, मेरी सांसें शाम की भीगी हवाएं हो गईं। जिंदगी की सातें रोशन थी शमों की तरह, जिस तरह से शाम गुजरे जुगनुओं के शहर में, जिस तरह महताब की वादी में दो साए रवा, जिस तरह घुंघरू छनक उठे नशे की लहर में, आओ ये सोचें भी कातिल है तो बेहतर है यही, फिर से हम अपने पुराने जहर को अमृत कहें। तू अगर चाहे तो हम एक दूसरे को छोड़कर, तू अगर चाहे तो हम एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने बेवफाओं के लिए रोते रहे, अपने अपने बेवफाओं के लिए रोते रहे। और ये सोचें भी कातिल हैं तो बेहतर है, अपने अपने बेवफाओं के लिए रोते रहे। तू अगर चाहे तो हम एक दूसरे

दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। किस तरह ये लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं। और उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। वक्त करीब आन पहुंचा है कि अब आपसे इजाजत लेनी होगी, और जाने से पहले हमेशा की तरह चंद जुमले जो काबिश हुआ करती है कि आपकी समाअतों के तवस्सुत से अपने आप को समझाता चलूं। इंसान की आरजुएं और उनकी वसत, इंसान का इरादा और इख्तियार, इंसान की ये जिस्त की मुसाफत और जो मुयसर आता है वो रखते सफर। इनमें से कुछ भी एक सा हो नहीं सकता हर इंसान के लिए, कि सब कुछ मुख्तलिफ हुआ करता है। और हर इंसान की अपनी एक बर्दाश्त है, हर इंसान का अपना एक सफर है, हर इंसान का अपना एक रखते सफर है। सब कुछ उसकी मुताबकत से हुआ करता है, लेकिन यह इंसान जो के खाली जहन इस दुनिया में आता है और बहुत जरूरी हो जाया करता है उसके लिए कि वो मोहब्बत के मानी समझ सके। अगर वो नहीं समझ पाता है तो फिर इस मुंजमिद जज्बे को जो कि हमारी जात के अंदर कहीं रहता है, कहीं कोई तमाजत हुआ करती है जो उसको पिघला दिया करती है, कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन जरूरी है कि इस जज्बे से आशना हुआ जाए। और जब इस जज्बे से आशना हो जाता है इंसान, इसको समझ लेता है, इसके मानी समझ में आ जाते हैं, तो फिर वो नुकसान नुकसान लगता नहीं है। वो जो वाकया गुजरा था, वो जो ताल्लुक था, वो जो शख्स था, या वो जो कुछ भी था, जो मोहब्बत सिखा गया, वो आतिश-ए-ज़ीस्त मुझे तेरी जफाओं से मिली। कभी लिखा था ये शेर, आतिश-ए-ज़ीस्त मुझे तेरी जफाओं से मिली, तू मेरा होता तो कुछ नाम ना होता मेरा। कहीं पहुंचा दिया करता है ये जज्बा इंसान को, और उसे एक राह तक पहुंचा दे तो क्या ही बात है। जो राह उन्होंने दिखा रखी है जो इस जज्बे को वदियत करते हैं हम इंसानों के अंदर, वो जो कुन्फा यकून के मालिक है। वो जो कहते हैं कि मैं किसी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, किसी जीरो को। वो जो कहते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, वो कैसे मेरे जख्मों पर मरहम रखते चले जाते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ, जब वो कहते हैं कि तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अता करूँगा, जब वो कहते हैं कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, और फिर जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जुलमात से निकाल कर नूर की जानिब ले जाऊंगा, मुझे मालूम पड़ता है कि मैं तो जुलमात में था, मुझे नूर तो बताया ही नहीं गया, मुझे नूर तो दिखाया ही नहीं गया। और ये उनकी इनायत थी कि उन्होंने मुझे चुन लिया वो नूर दिखाने के लिए, जुलमात से निकाल कर चुन लिया गया मुझे कि मैं उस नूर की जाने चला जाऊँ। और फिर वो कहते हैं कि तुम पर कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, तो तुम्हारे किए की बिना पर होती है, और तुम मुझे पुकारते हो, और जब मैं वो तकलीफ दूर कर दिया करता हूँ तो यूं मुंह फेर लेते हो जैसे मुझे जानते ही नहीं। तो ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही किया करते हैं हम, ऐसा ही करता आया मैं, तभी तो नूर तक पहुँच नहीं सका,
वो नूर जो मंजिल है वो हकीकी मंजिल है। जिस तक पहुंचते हैं मोहब्बत वाले, जिस तक पहुंच जाया करते हैं इश्क वाले, उस राह पर चलते हुए जिस राह को वो सिराते मुस्तकीम कहते हैं और जिस राह पर अनंता लेहिम वाले चलते हैं, मकजूब अलेहिम वालों को जुलमात से निकाल कर नूर की जानिब लाया जा सकता है या नहीं? क्या मैं मकजूब अलेहिम वालों की सफों में हूँ या कोई रास्ता है कि मैं अनंता अलेहिम वालों में शामिल हो जाऊँ? मंजिल से आशना हो चुका हूँ और राह भी मालूम है, बता दी उन्होंने, उनकी अनायत है, कैफियत से दो चार कर दिया। मंजिल कितनी खूबसूरत है, इसको समझना है तो फिर एक ही राह है और वो राह सिराते मुस्तकीम है। और मंजिल क्या है? मंजिल नूर है, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, आसमानों और जमीन का नूर, वही मंजिल है और बस वही सब कुछ है। वो जो रब है वही सब है। तो वह मोहब्बत के मानी सिखाया करते हैं, कहीं कोई ठोकर लगती है, कहीं कोई परेशानी आती है तो मोहब्बत समझ में आ जाती है और उसके जाब्ते, उसके तकाजे, जिनमें से सबसे ज़रूरी तकाजा हुआ करता है कि महबूब के महबूब को भी चाहा जाए। तो फिर अगर उनसे मोहब्बत के दावेदार हैं तो उनकी मखलूक से मोहब्बत करनी होगी, अगर मोहब्बत के मानी समझ आ गए हैं और मंजिल तक का रास्ता सामने है तो फिर झूमते चले जाना है उस रास्ते पर, जहाँ नफा नहीं रहमत है, जहाँ नुकसान नहीं मसलहत है, यहाँ होना ना होना है, ना होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना होता है। जो चाहिए जिंदगी में वो तकसीम कीजिए, खुशियाँ चाहिए तो खुशियाँ बांटिए, आसानियाँ चाहिए तो आसानियों का सामान पैदा कीजिए, अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पाँव में चुभा हुआ कांटा निकालिए। रब ताला की नेमतों और बरकतों का नजूल होगा आपकी ज़िंदगी पर। कुछ अच्छा लगा हो तो दस्ते दुआ जब बुलंद होना चीज़ को याद रखिएगा, और कोई बात समा खराशी का बायस बनी हो तो माज़ूर चाहूँगा। सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले इतवार की शब फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आतिर अली सैयद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: from the Federal Capital City of Pakistan, this is FM 101.
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।

और वो जो दीवार थी सो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे और उसके नीचे उनका खजाना मदफून था और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए, ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके।

कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए स्याही हो तो कबल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हों समंदर खत्म हो जाए, अगर चाहे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं।

0: कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, अलबत्ता मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा माबूद वही एक माबूद है। तो जो शख्स अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखे, चाहिए कि अमले नेक करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न बनाए।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ

फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि ये मुझे आसान है और मैं उसे उसी तरीक पर पैदा करूंगा ताकि उसको लोगों के लिए अपनी रहमत की तरफ से निशानी और जरिया रहमत व मेहरबानी बनाऊं, और ये काम मुकर्रर हो चुका है। तो वो उस बच्चे के साथ हामिला हो गई और उसे लेकर एक दूर जगह चली गई।

तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज़ कलाम नहीं करूँगी।

0: और उनको हसरत और अफसोस के दिन से डराओ जब बात फैसल कर दी जाएगी और है हाथ वो गफलत में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं लाते।
1: इन्ना नहनु नरिसुल अर्द वमन अलैहा व इलैना युर्जऊन।
0: हम ही जमीन के और जो लोग इस पर बसते हैं उनके वारिस हैं और हमारी ही तरफ उनको लौटना होगा।

0: उसने कहा कि इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार करूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा।
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا।
0: इब्राहिम ने सलाम वालेकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है।
1: वा...

और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर उसे उस पर गुजरना होगा, ये तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम और मुकर्रर है। फिर हम परहेजगारों को निजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे।

0: वो वही तो है जिसने तुम लोगों के लिए जमीन को फर्श बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते जारी किए और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसे अनवा अकसाम की मुख्तलिफ रोइदगियां पैदा की।
1: إن في ذلك لآيات لأولي النهى
0: كي خود بكاؤ اور اپنے چا